0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवै लख होवै लखवीस लख

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी।
2: पंजाबी लेसन मेला इज बैक
3: एंड द स्टेज इज अबाउट टू एक्सप्लोड। कंफर्म

0: Biker Radio. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर
2: द स्टार।
3: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
1: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
2: Create terror.
1: वेखो द स्टार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
3: एक सिंह दा पुत्तर द स्टार सजाऊंगा भी ते द स्टार लई लड़ूंगा भी।
5: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
6: Nazar se nazar.
5: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Laika Radio Network.
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सवे में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
0: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Cool music for a super hot summertime on the Laika Radio Network.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Leica Radio.
0: Traffic and travel.
3: I'm Louisa Gale, and it remains slow northbound on the M6, although all lanes have reopened from this morning's breakdown to the M5 interchange up towards 9 for Wednesbury. However, still problems in Wolverhampton for Friar Street. That remains closed. Investigation work from this morning's serious accident between Long Street and Railway Drive. And there's no service again on Transport for Wales between Birmingham International and Wolverhampton because of the hot weather. And you've also got delays on Chiltern Railways between Banbury and Leamington Spa because of a signalling problem. And no changes yet in Leicester because of that roof which collapsed on Wharf Street South. That remains closed between the A594 St Matthews Way and Gladstone Street. And that's the latest traffic and travel.
0: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com. Is Leica Radio.
4: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 7.49. Leela Medium Atta 10kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box, 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5kg for 3.99. Mido Yogurt 10kg, 8.99. Karela or Long Dudi, 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE54UN.
5: White Hill Studios pesh karte han period action thriller
6: The Star.
7: Ek alla kapda nahi hai, ek kahani hai kai sadiyan di.
5: Starring Tarseem Jassad, Keith Goraya, te Yograj Singh.
8: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
9: Create terror.
5: Vekho The Star, tuhade nele cinema karach 17 July nu.
10: Ek Singh da putta The Star sajaunga vi te The Star layi ladunga vi.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410. दैट्स 8574 8410.
12: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड.
13: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.

0: morning. स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के गोल्डन गीतों का खजाना लुटाया जा रहा है और आपको आपको बुलाया जा रहा है, आइए और लूटिए। शुक्रवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 17 तारीख। हर रोज भाई कैलेंडर आगे बढ़ता है, दिन गुजरता है, आज कुछ या बदला बदला सा है। कुछ रौनक सी है, कुछ चर्चे हैं, कुछ खर्चे हैं। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। और भाई सबसे पहले शुरुआत करने से पहले धन्यवाद करें इस लड़की का। अरे सुन दीजा, वो तो निकल गई।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Cranking out the biggest hits for the capital. This is Leica.
2: Oh my god, ye ta koi galli hui hai? स्टूडियो मेरे हवाले करके कुड़ी पच गई। अब गाड़ते सुन जा।
3: ओए चन जी, जरा मुड़ के तो देख।

0: talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: वेरी गुड मॉर्निंग भाई, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बैक टू बैक संगीत से दो गीत हमने परोसे और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं को पसंद है, पर आपके मैसेजेस कुछ ज्यादा ही आए भाई। विषय कुछ अलग से है, गीतों की प्रशंसा में नहीं, दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ। तो साहब, सर आंखों पर आपका प्यार, आपका उद्गार, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बता दें आपको पाउंड का रेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके वाले कह रहे हैं भाई रेट अच्छा चल रहा है सचमुच। इफ यू वांट टू सेंड मनी टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन इंडिया टुडे दे आर गिविंग 129.25 रुपीज फॉर वन पाउंड, 129.25 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन सेंड वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉक। Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
0: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
1: और फुटबॉल का भाई स्कोर या अपडेट ये है कि इंतजार है। हाँ, अब बिल्कुल सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस बाकी है, खेल अभी बाकी है, उनसे मेल अभी बाकी है फ्रांस से। देखिए साहब, बात यह है कि हार जीत तो खेल में चलती है, लेकिन इस बार मुझे यकीन है कि कम से कम तीसरा स्थान तो हम पा ही लेंगे। और भाई 1-2-3 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आ जाए तो हम कहेंगे कि हम विनर हैं। लेकिन फ्रांस की टीम भी तगड़ी है और वो भी चोट खाई हुई है, हार के आई हुई है। तो फ्रांस वर्सेज इंग्लैंड विल बी टुमारो फॉर थर्ड प्लेस एंड द मैच विल स्टार्ट एट 10 o'clock इन द नाइट। यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, खेल गजब का होता है भाई, हार जीत तो होती रहती है। फाइनल मत भूलिएगा संडे 19 जुलाई को, उसका भी मजा लेंगे, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। ऑल द बेस्ट फुटबॉल, क्रिकेट का जिक्र नहीं करेंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: And don't forget भाई रैक लो, आर ए के लॉ को अगर आप कॉन्टेक्ट करें तो भाई 15 मिनट्स की जो लीगल एडवाइस है वो आपको फ्री देंगे। यस, कानूनी मशवरा बिल्कुल मुफ्त देंगे अगर आप लाइका मेंशन करेंगे।
0: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: ये है
2: Leica Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

आइए सैर पर चलते हैं, देश से बाहर निकलते हैं। अरे भन भाइयों, कभी गांव से बाहर निकलने का नहीं सोचा था, फिर निकले तो शहर पहुंचे, शहर से निकले तो दूसरे राज्यों के भाई लोग देखे, कल्चर देखी, खान पान देखा, और ये तो सोचा ही नहीं था कि कभी विदेश यात्रा भी करेंगे। और उसके बाद भाई सच यकीन मानिए, दुनिया घूमे बिल्कुल राज कपूर की तरह बिना खर्चा किए, $8 में विश्व भ्रमण का मौका।

0: दुनिया की सैर करना भाई, ये वो जमाना था मेरे जैसे लोगों के लिए कि भाई हम सिनेमा हॉल में बैठ के ही बाहर के शहर देखा करते थे, बाहर की दुनिया से मिला करते थे और लोगों से, उनकी संस्कृति से जान पहचान बढ़ाते थे। लेकिन अब तो भाई नेचुरली कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, पर ऐसे में राज कपूर साहब ने ये फिल्म बनाई थी दुनिया घुमाने के लिए। इससे पहले भी बाहर के दृश्य फिल्माने के लिए लव इन टोक्यो, लव इन शिमला, लंबू इन हांगकांग, मतलब घर बैठे एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन, तो इस तरह से भाई ये घुमाते थे, विदेश दिखाते थे। और अब तो हर व्यक्ति, आम घरों से भी बच्चे, कोई पढ़ने के लिए, कोई लड़ने के लिए नहीं कोई भाई कमाने के लिए, कोई अपना पांव जमाने के लिए तो बाहर निकलते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि दुनिया छोटी हो रही है, एक दूसरे के बारे में जानकारियां बढ़ रही हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और उम्मीद है कि इसी तरह से एक मार्ग युद्धों को रोकने का भी खुलेगा। राइट नाउ भाई 10:30 बज गए हैं, खबरों का वक्त हो गया है। और यहाँ अपनी ब्रिटेन की राजनीति में तो बता दें कि प्रधानमंत्री स्टामर जो है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं कि पूरे स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट से निकलूंगा। और भाई देखिए नए प्रधानमंत्री की तैयारियां हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या वो करने जा रहे हैं, कहते हैं अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो अलग तरह का उनका वो रहेगा। पूर्व मेयर हैं मैनचेस्टर के, अनुभवी हैं, और अब देखते हैं भाई सत्ता संभालने के बाद मंडे को शायद जो है वो प्रवेश करेंगे, पर जब भी करेंगे वो दृश्य वह हम भी रेडियो से बखान करेंगे और स्वागत करेंगे नए प्रधानमंत्री का। पर उससे पहले और दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट द न्यूज इज नेक्स्ट ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क। पर पहले ये बता दें कि ये गीत कौन पहुंचा रहे थे आप तक, ये दुनिया की सैर कौन करवा रहे थे।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। फिल्मी दुनिया से एक समाचार आया, आमिर खान ने कहा कि सोनम वांगचुक पर नहीं बनी थी थ्री इडियट फिल्म। ये सोनम वांगचुक जो हैं ये सचमुच बहुत चर्चित हैं, बताएंगे क्यों। अमेरिका ने कहा है कि चीन ने गैर कानूनी तरीके से हमारे 22 करोड़ वोटर्स की जानकारी हासिल की थी। नीट यूजी 2026 री एग्जाम के रिजल्ट जारी हो गए हैं। भाई ये नीट यूजी जो है ना, इसमें ये बड़ी कठिन परीक्षा होती है, पास करके जो है विद्यार्थी स्टूडेंट्स या जो भागीदार होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो 11.21 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, टॉप किया है। दो लड़कों ने, एक पंजाब से, एक हरियाणा से और एक गुप्ता और एक बंसल, क्या कहने भाई, बधाइयां शुभकामनाएं। और साहब फुटबॉल की बात करते करते हम क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंच गए। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे वनडे में 4 विकेट से हरा दिया है, अब सीरीज बराबरी पर टिकी है। अगला मैच निर्णायक होगा जो संडे को खेला जाएगा लॉर्ड्स के मैदान में, और स्कोर के आंकड़ों से हम आपको परिचित रखेंगे। अन्य समाचार, भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर जापान के फॉर्मर कानून मंत्री हिदेकी माकिहारा ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। हिदेकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत में शिमकासेन प्रोजेक्ट यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, कहते हैं कि वो उससे मैं खुद भी जुड़ा हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल मीटिंग्स और बातचीत के दौरान जो बात सबसे ज्यादा खटकी वो थी भारतीय पक्ष की ओर से बार बार दिखाई गई घोर लापरवाही। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना वादा कभी नहीं निभाते, अगर वे कोई वादा करते भी हैं तो तुरंत उससे मुखर जाते हैं, वे आखिर तक बस अपने ही फायदे के बारे में सोचते रहते हैं। भाई सभी ऐसा करते वैसे तो, लेकिन वो कहते हैं कि यकीनन भारत के पक्ष की ओर से देर हुई है, हमारी तरफ से कोई देर नहीं है, हम तैयार हैं। जापानी मंत्री का बयान था। रोहित शर्मा क्रिकेटर इंटरनेशनल कैरियर को लेकर भाई उनके बारे में जो अटकलें चल रही हैं उसके बारे में पता चला है कि इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाला जो मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान में हो रहा है ये उनका आखिरी वनडे टेस्ट हो सकता है। बाकी अन्य विधाओं से तो भाई वो पहले ही अलग हो चुके हैं, पर पता चला है कि लॉर्ड्स में जो क्रिकेट का वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा वो रोहित शर्मा के लिए आखिरी मैच हो सकता है, अटकलें हैं। अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। कल शाम से लेकर आज सुबह तक ईरान में अमेरिकी अटैक्स जारी रहे। ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इन हमलों का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप बहुत जल्द इन कार्रवाइयों के नतीजे देखेंगे और उन्होंने दावा किया कि ईरान के खिलाफ बड़ी जीत वो हासिल कर रहे हैं। लंदन के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आमिर खान ने कहा है कि फिल्म थ्री इडियट्स में उनका किरदार रेंचो जो था वो सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं था। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर के चिंता जताई है। सोनम वांगचुक भाई आपको बता दें कि हड़ताल पर है, भूख हड़ताल पर है, कुछ नहीं खा रहे हैं हम, और ये चिंता का विषय है राजनीतिज्ञों के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी और उनके प्रशंसकों के लिए भी। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक पैसेंजर ट्रेन से एक स्कूल की वैन टकरा गई। आज सुबह वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में करना सुवर्णा स्टेशन के पास इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में वैन में सवार 2 स्कूली बच्चे और साइकिल चला रहा एक बुजुर्ग भी चपेट में आ गया। एनवायरमेंट को लेकर के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे यानी भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के 20वें दिन लोगों को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर से भले ही कमजोर हूं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अंदर बाहर दोनों तरफ से स्ट्रांग रहेंगे। ये मजबूती 20 जुलाई तक तो रहनी ही चाहिए जब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक मार्च निकालेंगे। अब ऐसी हालत में भाई भूख हड़ताल रखे हुए बहुत कमजोर हो गए हैं। वांगचुक कहते हैं कि हमने 20 जुलाई को संसद तक पार्लियामेंट तक वॉक करना है। उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और अगर आप लोग नहीं आए और 20 जुलाई कामयाब नहीं हुआ तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। क्यों? यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की के डिफेंस मिनिस्टर मिखाइलो फेडोरोव को बदलने के अचानक लिए गए फैसले से सिविल सोसाइटी में भारी नाराजगी और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में उनका विरोध जो है महसूस किया गया है। कल सुबह राजधानी कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों में ज्यादातर नौजवान लड़के जमा हुए। उन्होंने फेडोरेव से दूर रहो और जीत में बाधा डालना बंद करो इस तरह के नारे लगाए और शर्म करो के लिखे हुए पोस्टर उठाए हुए थे। भारत में नीट यूजी 2026 री एग्जाम के रिजल्ट जारी हो गए हैं। लड़कियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट यूजी री एग्जाम के रिजल्ट जारी किए। इसके मुताबिक पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने संयुक्त रूप से इस परीक्षा में टॉप किया है। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 4 विकेट से हरा दिया है। अब दोनों तरफ भाई एक एक जीत दर्ज हो गई है यानी मामला बराबरी पर है। आखिरी वनडे इंटरनेशनल संडे को लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा जो एक निर्णायक मैच होगा। अमेरिकी फौज ने बताया कि उसने लगातार 6ठी रात ईरान पर अटैक किए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल को लेकर के दोनों देशों के बीच संघर्ष बना हुआ है। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी बताया कि अमेरिकी मिसाइल्स हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित केशम आइलैंड के करीब गिरी हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियर प्लांट वाली जगह पर बंदर अब्बास और बुशहर में भी अटैक हुए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
4: Welcome, friend, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
5: No!
4: Samba?
5: No!
4: Rumba?
5: No!
4: Samba?
5: No!
4: Tequila?
5: No!
4: Tango?
5: No!
4: Charleston?
5: No!
4: Polka?
5: No!
4: No?
5: No!

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप लाइका गोल्ड के कार्यक्रम सुन रहे हैं। दिस इज मनोरंजन विद रवि शर्मा, दैट्स माय नेम। और बहन भाइयों, प्रोग्राम के दूसरे दौर में हम चिंतन से आपका स्वागत करते हैं। आज का विचार सुनवा रहे हैं। आज का विचार, आज है एक खास त्योहार, क्या है बताइए? अरे साहब, वो त्योहार नहीं है जिसके लिए बहुत सारे मैसेजेस मुझे आधी रात से मिल रहे हैं, मेरे मोबाइल पर भी और यहाँ हमारे स्क्रीन पर भी, भाई सर आंखों पर आपका प्यार और आपका सत्कार। लेकिन आज जो है त्योहार कौन सा है? वेल, लंदन में उसकी झलक आप देखते हैं, लेकिन दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे रथ यात्रा कहा जाता है। अब कहेंगे भाई आपको बता दूं कि वैसे यहाँ पर काफी कार्यक्रम जो वीकेंड पर होते हैं आयोजित, एक्चुअल तिथि आज है रथ यात्रा की, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि भाई यहाँ लंदन में रथ यात्रा निकल रही है और हम उसमें शामिल हो रहे हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग द एनुअल रथ यात्रा ऑन संडे 19 जुलाई स्टार्टिंग फ्रॉम SKSST कैंटन हेरो टेम्पल एंड एंडिंग एट श्री स्वामी नारायण मंदिर स्टैनमोर। डिवोटीज विल हैव द चांस ऑफ पुलिंग लॉर्ड जगन्नाथ जी चैरियट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हेरो एंड ब्रेंट। तो साहब वहां से जो है वो लाइव झलकियां देख करके हम आप तक पहुंचाएंगे रेडियो के माध्यम से, और भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है उसे जिस सजावट उसकी वहाँ की चहल पहल, वहाँ का सात्विक वातावरण, वो सब हम आप तक पहुँचाएंगे। और वहाँ पर रहेंगे मेरे साथ सरिता सबरवाल, अश्विनी लाइका गोल्ड से, और शर्मा जी खुद भी होंगे। तो भाई वो बड़ा क्या कहें कि आनंदमय उत्सव जो है हम रेडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन कई लोग जानना चाहेंगे क्या है ये रथ यात्रा, क्यों है ये रथ यात्रा? भाई बड़े बड़े रथ जिन्हें लोग खुद खींच करके लेके जाते हैं, तो बता दें इसका इतिहास बड़ा गौरवमय है। रथ यात्रा के लिए जो जानकारी हम आज साझा कर रहे हैं आपके साथ, हमें नॉरवुड ग्रीन से श्रीमती सरस्वती शर्मा जी ने भिजवाई है। थैंक यू वेरी मच आंटी जी। और भाई और भी बहुत सारे लोगों के संदेश जुड़ गए हैं आके, रथ यात्रा की तरफ भी ध्यान दिलाया कुछ ने। लेकिन साहब आज किसी का जन्मदिन भी है, किसका है? जरीना वहाब का, उन्हें भी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। जरीना वहाब एक अभिनेत्री रही हैं, कई कामयाब फिल्में उन्होंने दी, जिक्र करेंगे आगे चल के हमारे देशराज बैसन साहब बता रहे हैं। रथ यात्रा की ओर वापस आइए, हमारे भाई रथ यात्रा के इतिहास में बता दें कि ये एक प्राचीन और भव्य धार्मिक उत्सवों में से एक है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र के साथ बहन सुभद्रा, भाई इनकी ये वार्षिक यात्रा का त्योहार है, सालाना सैर यात्रा दौरा। और इसका जो मेन आयोजन है वो जगन्नाथ टेम्पल से नीचा टेम्पल तक होता है, ये उड़ीसा में है, पुरी में। मान्यता है कि साल में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की होती है। भगवान वहां 7 दिन निवास करते हैं और फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से श्री मंदिर वापस लौटते हैं। अब इस उत्सव की एक विशेष परंपरा है छेरा पहाड़ा, जिसमें गजपति महाराजा ऑफ पुरी, पुरी के जो राजा हैं वो सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। राजा झाड़ू लेकर सफाई करे तो ये एक संदेश है भाई। आपको बता दूं कि तीज त्योहारों में बहुत सारी चीजें सांकेतिक होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, उनके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं भाई हमारे तीज त्योहार, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी परंपराएं। 3 रथ होते हैं, यहाँ लंदन में भी आप देखते होंगे, यहाँ यूरोप में कई शहरों में रथ यात्रा निकलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि 19 तारीख संडे को निकल रही है SKSST
कैंटन से शुरू होगी और स्टैनमोर टेम्पल तक, स्वामीनारायण मंदिर तक जाएगी यात्रा। तो आप देखेंगे कि उसमें तीन बड़े बड़े रथ हवा से बातें करते हुए ऊंचाई तक अपनी उसकी चोटी को लहराते हुए, आपको बता दें कि भाई पहला जो जगन्नाथ भगवान का रथ, उसका नाम है नंदी घोष। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज और माता सुभद्रा का रथ कहलाता है दर्प दलन, देव दलन। अब भाई शब्द से तो ऐसा लगता है कि किसी का घमंड तोड़ने वाला वो दर्प का मतलब है अहंकार का खत्म करने वाला वो रथ है। तो इनके पीछे कहानियां ढूंढ के अभी आपके साथ साझा करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा आज शुक्रवार 17 जुलाई को मनाई जा रही है दुनिया भर में। और जो लोग भाई काम के कारण आज नहीं मना रहे तो वो वीकेंड पे मनाते हैं। ये पर्व, ये त्योहार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन होता है, दूसरी तिथि के दिन जो आज है। और बहुधा यात्रा यानी वापसी की यात्रा जो है वो इस साल 25 जुलाई शनिवार को होगी अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। और नीलाद्री विजय मंदिर में फिर से एंट्री जो है वो 27 जुलाई सोमवार को होगी। अब इसके पीछे जो स्पिरिचुअल मैसेज है, जो आध्यात्मिक संदेश है, वो है कि रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये संदेश देता है ये त्योहार कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। ये प्रेम, समानता, सेवा और भक्ति का त्योहार है। और छेरा पहाड़ा जो इसके साथ जुड़ा है वो है गजपति महाराजा ऑफ पुरी। जब तीनों रथों के पास आते हैं और सोने के हैंडल वाली झाड़ू से रथों के मंच को बुहारते हैं, सफाई करते हैं, इसके बाद वो चंदन मिश्रित जल और जो खुशबूदार पदार्थ होते हैं, सुगंधित द्रव्य होते हैं, उनका छिड़काव करते हैं। ये हर बरस होता है। अब जरा सोचिए, विनम्रता का प्रतीक है, सिंबोलिक अर्थ समझ लीजिएगा। राजा भी भगवान के सामने सेवक बनकर, नौकर बनकर आता है, यानी हर व्यक्ति समान है भगवान के सामने, समानता का संदेश। सेवा भाव, सच्चा नेतृत्व सेवा और विनम्रता से होता है, सत्ता से नहीं, अधिकार से नहीं। इस परंपरा के कारण जगन्नाथ संस्कृति में यह भावना प्रबल होती है कि भगवान जगन्नाथ के सामने सब समान है। और भाई इस अनुष्ठान के पूरा होने के बाद भक्तों द्वारा रथों को खींचने की शुरुआत होती है, यानी जब सफाई हो जाए। इससे यह भी साबित हो गया कि राजा हो या प्रजा, आम आदमी समान है भगवान के सामने। झाड़ू लगाकर सफाई करने की जो परंपरा, वो ये संदेश देती है कि भगवान वहीं जाते हैं, वहीं निवास करते हैं जहां पवित्रता है, स्वच्छता है, साफ सफाई है। छेरा का मतलब ही झाड़ू लगाना है और पहाड़ा का मतलब छेरा पहाड़ा, यानी अनुष्ठान या सेवा। सेवा का बहुत बड़ा महत्व है मंदिरों में, खासकर गुरुद्वारों में। आप जाके देखें सेवा क्या होती है, आपको देखने को मिलेगी। श्रद्धा पूर्वक भगवान के रथ की सफाई करने का पवित्र अनुष्ठान, फिर रथ को खींचने की ये ट्रेडिशन, और भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक, राजा राजा नहीं कहलाता, सेवक कहलाता है, दास प्रभु का। तो अहंकार की समाप्ति, घमंड का परित्याग करके, सेवक बनकर, झाड़ू लगा के राजा ये साबित करता है कि भगवान उसी से प्रेम करते हैं, उसी के पास जाते, स्वयं जाते। देखिए लोग मंदिरों में जाते हैं, उस दिन मंदिर से निकल के भगवान रथ यात्रा में के माध्यम से आम लोगों के बीच से गुजरते हैं। राजा कहता है मैं राजा नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं। इसके बारे में एक घटना, एक कहानी भी लिख भेजी है श्रीमती सरस्वती शर्मा ने। कहते हैं कि उनको झाड़ू लगाते देख करके एक दूसरे राजा ने कहा यह तो बहुत छोटा काम कर रहा है, झाड़ू लगाना राजा का काम थोड़ा ही है। उसने पूरी के राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करना था, वो शादी तोड़ दी, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब पूरी के सम्राट ने कहा कि मैं सेवक हूं भगवान का, हर व्यक्ति को होना चाहिए, मैं आदि सेवक यानी पहला सेवक हूं,
तब उस राजा ने अपना विचार बदला, परिस्थितियां बदली। उस राजा को भूल का एहसास हुआ जिसने रिश्ता तोड़ दिया था। इस घटना के बाद यह संदेश दूर दूर तक फैल गया कि सच्चा राजा वही है जो सेवा को अपना धर्म मानता है, जो अहंकार का त्याग करता है, जो ईश्वर के समक्ष सेवक बन के जाता है, मालिक बन के नहीं। तो बहनों भाइयों, रथ यात्रा से बहुत सारे संदेश मिलते हैं। और फिर याद दिला दूं कि भगवान कहते हैं जब सब मेरे भक्त मेरे द्वार पर आते हैं तो मैं उस मंदिर से, उस दिव्य स्थान से निकलकर भक्तों के पास जाता हूं। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। ये भगवान का संदेश है कि अगर एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हो तो मैं 60 कदम चलकर आपकी तरफ आता हूं। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। अगर तुम हो कीले काट के तो मैं लोहे की लाठ। अब तुम ही मेरी तरफ से अगर उन्मुख नहीं होगे तो मैं भी आपकी ओर नहीं आऊंगा, बता दूंगा। तो उस रथ में सवार होकर भगवान निकलते हैं और भक्त खींचते हैं रथ को। भाई ये अवसर, ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा 19 जुलाई को कैंटन में, और वहां से रास्तों से गुजरते हुए हैरो टेम्पल में पहुंचेंगे श्री स्वामी नारायण मंदिर स्टैनमोर में। कैंटन हैरो से निकलेंगे और स्टैनमोर में पहुंचेंगे स्वामी नारायण मंदिर।

बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ जगन्नाथ जी की निकलेगी सवारी भाई। आज ये दिन है लेकिन यहाँ कैंटन में सेलिब्रेट हो रहा है ये पर्व, ये त्योहार। 19 तारीख को पहुंचिएगा वहां, हम भी पहुंचेंगे। नॉर्वुड ग्रीन से श्रीमती सरस्वती शर्मा जी का भेजा आलेख आज के चिंतन में हमने शामिल किया। और भाई, संदेश के अहंकार का त्याग ही सच्ची महानता है। अहंकार यानी राजा सिंहासन त्याग करके झाड़ू लगाता है भगवान जगन्नाथ के रथ को साफ करने के लिए। लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं इस पर्व में, आप भी पहुंचेगा। भारतीय कल्चर में विनम्रता, पोलाइटनेस, सेवा और समानता का जीवंत संदेश है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और आपको बता दूं भाई, सांकेतिक या सिंबोलिक भाषा में वत्सला जी लिखती है, देह हमारा रथ है, ज्ञान रूप बलभद्र जी, भक्ति रूप सुभद्रा जी, और उसमें जो आत्मा निवास करती है ना हमारे शरीर में, दैट आत्म स्वरूप भगवान जगन्नाथ सदा विराजमान है। भाई हमारे जैसी जस करण जी, आपने बहुत प्यारा और बहुत न्यारा कार्ड बना के भेजा है। ठीक है भाई, आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमारी सरस्वती आंटी जी ने भी भेजा है। कितने लोगों ने भाई ये संदेश भेजे, अब एक एक का धन्यवाद दिल से करता हूँ, गहराई से वो भाव निकलते हैं, मुझे पूरा विश्वास आप तक पहुँचते हैं। बलभद्र जी और सुभद्रा जी, ठीक है भाई, मान लेता हूँ आज मेरा जन्मदिन है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू मी, लेकिन कोई संस्कृत में कहे तो कैसा लगे, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, तब आपका जन्मदिन जो है अच्छा दिन गुरुदेव, सुदिनम या सुदिवसम, जन्मदिन तब आपका जन्मदिन भक्त मंगलम जन्मदिनम, आपका जन्मदिन का जो है वो मंगलकारी हो। चिरम जीवम कुरु पुण्यवर्धनम, आप देर तक जिए और पुण्यों की बढ़ोतरी करें, आपका पुण्य बढ़े। चिरम जीवम कुरु कीर्ति वर्धनम, और देर तक जीते आप अपनी कीर्ति में वृद्धि करें, आपकी बड़ाई आपका यश पहले। और सुदिनम पुनः पुनरावर्तम वर्तताम, क्या आपका ये शुभ दिन बार बार आए, पुनर्वर्तताम। थैंक यू, नाइस मैसेज इन संस्कृत।

0: सत्यव्रत शर्मा भाई साहब भिजवा रहे हैं आशीर्वाद वुल्वरहैम्पटन से। करसन पिंडोरी, अमृदु अर्जुन, पम्मी, पुष्पा चौहान, राजीव पटेल, विजय मॉरिशस वाले, महेंद्र क्रोइडन वाले, रागिनी निर्मला जी, थैंक यू वेरी मच। नीला चौधरी जी कहते हैं सुपर्ब एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा लगा चिंतन, थैंक यू नीला जी। रानी स्लो वाली, और आप कौन है? एस काजमी साहब, या साहिबा, थैंक यू। रमा व्यास जी, थैंक यू वेरी मच। अंजलि जी, आपका संदेश मिल गया, अंजलि सिंह। जैस्मीन, अविनाश पटेल, थैंक यू वेरी मच अविनाश जी। बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें और बड़ी अच्छी चित्रकारी करके भाई भिजवा रहे हैं आप, आपका भेजा हुआ कार्ड बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है जैसे मैं सचमुच हैंडसम हूँ क्योंकि जिस तरह की तस्वीर बना के आप भेजते हैं। और जसकरण, थैंक यू वेरी मच भाई, ब्यूटीफुल कार्ड। हंसा वोरा जी, देशराज जी, अनिल सोनी वियाना में कहते हैं मजे आ गए शर्मा जी, थैंक यू सर। पूजा आइजलवर्थ में भिजवा रही है संदेश। डॉक्टर अशोक पटेल, सोनाई सफियो, हेना जी, आपका संदेश तो आधी रात को मिला था, आपने भेज दिया था रात को 12 बजे से थोड़ा पहले। सत्यनारायण सैनी इंडिया से, थैंक यू वेरी मच। धनसुख जी ल्यूटन में, आप सबको पता था मेरा जन्मदिन है आज? मुझे नहीं पता था क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो बहुत छोटा था, पूछ ही नहीं सका नर्से रेटे भाई आज क्या तारीख है। रोहिणी जी, आपका संदेश मिला, थैंक यू वेरी मच। रंजन जी, प्रतिभा जी, सुनीता जी, सुषमा जी, सुशीला जी, कितने नाम है भाई, ये सब दिल पर लिखूंगा, जगह बहुत है दिल में भाई, बहुत बड़ा दिल है। थैंक यू, आज का चिंतन समेटते हुए पुनः धन्यवाद दोहराता हूँ आप सबको, इनके प्यारे प्यारे संदेश मिले, थैंक यू वेरी मच। रथ यात्रा की भी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मिलती हैं 19 तारीख को SKSST कैंटन हैरो में, जो टेंपल है वहां।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे, रेट अच्छा चल रहा है, भारत पैसे भिजवा रहे हैं ना, हाँ नोट कीजिए, 129.25 रुपए दे रहे हैं वो एक पाउंड के बदले, 129.25 रुपीज। यू कैन सेंड वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: फुटबॉल की बात करें भाई, अगला मैच जो है वो संडे को सैटरडे को 18 जुलाई को मैच खेला जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीसरे स्थान के लिए, थर्ड प्लेस के लिए, लेकिन फाइनल मुकाबला तो संडे को है, दैट इज स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, शाम को 8 बजे होगा फाइनल मुकाबला संडे को, लेकिन उससे पहले सैटरडे को यानी कल 18 जुलाई को फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड शाम को 10 बजे, शाम को इसलिए कह रहा हूं कि देर तक उजाला रहता है, लेकिन रात 10 बजे है भाई मैच यहां के समय के अनुसार, और मुझे पूरा यकीन है कि ये एक हमारे यहां होता था जब मैं बहुत कंपटीशन लड़ा हूं मंच से, नाटक में, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में, स्किट में, मोनो एक्टिंग में, संगीत के फोक सॉन्ग्स कॉम्पिटिशन में, तो वहां एक फर्स्ट प्राइज होता था, फिर सेकेंड होता था और एक थर्ड प्राइज भी होता था, उसके बाद हम उसे क्या कहते थे, कॉन्सोलेशन प्राइज क्या कहते, तसल्ली वाला पुरस्कार, तो भाई ये तो जीत के लाएंगे ही लाएंगे इंग्लैंड वाले, लेकिन हम आपको बताएंगे कि भाई मैच जब चलेगा तो जानकारी देते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 7.49. Leela Medium Atta 10kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5kg. For 3.99. Mido yogurt 10kg 8.99. Karela or long dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN.
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day. We're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Southall Travel.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
7: Southall Travel, at all protected.
8: The Janan and J-Dot Summer Sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot Summer Sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara,
12: nazar se nazar.
11: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a 3-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
14: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
15: 4 beers, please, garçon!
14: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
16: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
17: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
18: Leica Radio.
17: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.
0: Leica Gold पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम और आज तो सचमुच मुझे गोल्ड लग रहा है भाई, क्योंकि मेरे जो कोलीग्स हैं, साथी हैं, सीईओ हैं, राजबद्दन साहब, हमारे बाली भाई, हमारी काजल, हमारी जो है खुश और हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के और दूसरे लोग भी जितने कोलीग्स हैं ना आसपास दिखाई दे रहे हैं, डोनी से लेकर के और रात के प्रेजेंट हमारे सैंडी शाह, सबने मिलकर के एक साजिश रची है। एक बड़ा सा केक मंगवा रखा है, वो उनको लगता है कि जैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन साहब वो जो तैयारियां कर रहे हैं, क्या कहूं, आप सब भी अपने घरों में बैठे कुछ तो यहां स्क्रीन पर भिजवा रहे हैं, मैं देख देख के खुश हो रहा हूं भाई। थैंक यू वेरी मच। और हमारी नीलम जी कहती हैं, एक गाना हमारी तरफ से अपने नाम लगा लो, ये भी कोई बात हुई। आप गाना भी आप लगाएंगी, खाना भी आप लगाएंगी। नीलम बख्शी हमारी रेगुलर लिसनर भाई, हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर। और भाई मीना जी, सुनीता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। अपने वीरेंद्र जी और हमारे पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबके लिए भाई धन्यवाद के शब्द हैं। और हमारे क्या है, मोहित, मोहित वर्मा जी कहते हैं, आपके बर्थडे के मौके पर डिनर तैयार है, आ जाओ। सही सही एड्रेस तो बताओ भाई। देखो पहले बताना था, ये मेरे दोस्तों ने भी नहीं बताया, हमारे कुलीग्स ने भी नहीं बताया कि हम इतना कुछ कर रहे हैं भाई, केक ला रहे हैं, खाना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले बताते तो मैं बीवी बच्चों को भी ले आता ना। Every single name on the screen, every single person who is attached to Leica Gold Radio, और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आप सबके लिए बहनों भाइयों एक ही शब्द है, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी।

0: चैन झुकाए रखिएगा, क्योंकि ये गीत अगले घंटे में पूरा सुनवाऊंगा भाई, यकीन करना मुझ पे। आप तो जानते हैं कि कभी कभी समय की मर्यादा के सामने झुकना पड़ता है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के रेट्स भाई, एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 129.32, पाकिस्तानी 373.61, श्रीलंकन 451.71, बांग्लादेशी टका 165.7 एंड अफगानी 88.57 दे रहे हैं।

0: बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दी भाई प्रोग्राम के आखिरी घंटे में। अभी अभी जो गीत आप सुन रहे थे दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म प्रेम रोग।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, Payback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर द स्टार।
6: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
5: स्टारिंग तरसेम जसड़, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
7: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
8: क्रिएट टेरर।
9: दीपक ने आ रही दुनिया तो दुनिया मार करे सरदार।
5: देखो द स्टार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नू।
6: एक सिंह दा पुत्तर दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार नहीं लड़ूंगा भी।
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-5748410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल एट ओपोटेक।

0: Listen to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: Pepe's, famous for flame grill marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
2: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7? And with your favorite presenters live. Get the tune-in details at LaikaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
3: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. आप जानते हैं कि इस साल की, इस सप्ताह की, साल के क्या, मैं तो कहता हूँ इस जन्म के, मेरे लिए तो बहुत फेवरेट है, इस सप्ताह के कलाकार का नाम है संगीतकार रवि, पद्मश्री संगीतकार रवि. भाई उनके अवार्ड्स गिनवाने लगूं तो नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 1994 में मिला, इसके बाद केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मलयालम में, और भाई दूसरी साउथ इंडियन भाषाओं में भी उन्होंने फिल्मों में संगीत दिया. फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 1962, 1966 घराना और खानदान, इन फिल्मों के लिए मिला उन्हें. संस्कृति कलाश्री अवार्ड 2006 और 2007 में चेन्नई में, तमिलनाडु में उन्हें मिला. और भाई सबसे बड़ा अवार्ड तो था संगीत प्रेमियों की प्रशंसा. और गीत कैसा भी हो भाई, मुझे हमारी वो जो नैना शाह है वो कहती है रवि जी खुद भी तो गाते थे. बिल्कुल गाते थे साहब, और उनके गीत सिंपल होकर भी, सीधी सादी तर्जों में होकर भी बहुत प्रभावशाली साबित होते थे. जरा सुनिए ये गीत, रवि जी की अपनी आवाज भी है और महेंद्र कपूर और दूसरे कलाकार भी हैं.

संगीतकार, गीतकार, गायक, कलाकार, बड़े होनहार भाई रवि साहब इस सप्ताह के आर्टिस्ट रहे और इस गीत में आपने रवि जी के साथ साथ महेंद्र कपूर और जयश्री की आवाजें सुनी। भले ही वो इस सप्ताह के कलाकार है लेकिन भाई यहाँ लाइका रेडियो जो है लाइका गोल्ड रेडियो पर गोल्डन गीतों की बात होती है तो वो सप्ताह के आर्टिस्ट नहीं, हमेशा के आर्टिस्ट हैं और उनके गीत बजते ही

0: सीधी सादी शब्दावली और भाई सीधी सीधी तर्ज और इतना मिठास, इतनी मेलोडी, संगीतकार रवि का कमाल। और बहनों भाइयों, अभी तो वीकेंड तक आप और भी बहुत सारी रचनाएं रवि साहब की सुनेंगे, ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अगला गीत तैयार है।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: प्रीतम ग्रेवाल जी और अमर ग्रेवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े संदेश आ रहे हैं प्यारे प्यारे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है लाइका रेडियो।
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: और ये सुपर हिट सॉन्ग पिछले घंटे में भाई बजते बजते रह गया, चलते चलते रोकना पड़ा समय की मर्यादा में रहकर। लेकिन हमने प्रॉमिस किया था, हम अपना प्रॉमिस निभाते हैं। फिर से सुनवाते हैं।
4: जो तेरे नैना

केत की आपका संदेश मिल गया है सर आंखों पर, थैंक यू। और कुमार साहब पॉल बेकरी वाले भाई, आपका तो केक सब जो जैसे मुंह में पहुंच गया, मुंह मीठा हो गया, थैंक यू।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: और लीजिए साहब, करेंसी रेट्स में बता रहा हूँ, नोट कीजिए। इस समय एक पाउंड के बदले ये दे रहे हैं LemFi वाले भारतीय मुद्रा में 129.39 रुपीस, पाकिस्तानी 373.6, श्रीलंकन 451.67, बांग्लादेशी टके दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 165.68 एंड अफगानी 88.64।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LIKA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
3: Well, the gold is trading at the rate of 95.6 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: और बहनों भाइयों, धीरे धीरे कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं हम, लेकिन भाई याद दिला दे, बहुत प्यारे प्यारे यार ये चित्र बना करके राजेंद्र राज साहब अपने बड़ी खूबसूरत कसीदाकारी की थी पिक्चर में, कसीदाकारी क्या कहते हैं उसको, सिलाई कढ़ाई भाई बुनाई, बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं, जैसे हमारे जसकरण सिंह जी ने बनाई, जैसे हमारे शेखर भाई ने, बहुत बढ़िया कारीगरी की है भाई, हंसी भी आती है और गर्व भी होता है कि आप लोग कलाकार हैं पूरे। आंटी जी, आपका संदेश मिल गया, थैंक यू। नैना शाह, थैंक यू। और भाई भारत से जो भेजते हैं वो और भी अच्छे लगते हैं। केतकी ने हिंदुस्तान से हमें संदेश भेजा है। विजय कहते हैं कल मेरा भी बर्थडे है। विजय भाई, आप कॉपी कर रहे हैं मुझे क्या? नहीं, पीछे पीछे आए थे आप, एडवांस में मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स।
4: Like a radio. List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Lela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollots Hill, Leicester, LE54UN.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking high

बड़े सॉन्ग लता मंगेशकर की आवाज। और फिल्म कौन सी रही होगी, किस फिल्म का गीत है ये, शायद साथी फिल्म का, और साथी है तो भाई नौशाद साहब का संगीत रहा होगा। भाई इस संगीत के बारे में क्या कहूँ, संगीत पूरी दुनिया में सबका संगीत बहुत प्यारा है, बहुत न्यारा है, बहुत मीठा है और प्रभु का वरदान है। और बहन भाइयों ये सही बताऊं आपको, प्रोफेशन इसलिए चुना, मैं तो अभिनय में बहुत दिलचस्पी रखता था और जब अपनी यूनिवर्सिटी में मैं 3 बार बेस्ट एक्टर डिक्लेयर किया गया तो मैं अभिनय करने के लिए निकला था घर से कि भाई एक्टिंग करेंगे तो पैसे कमाएंगे। मुंबई का रुख किया था लेकिन उससे पहले ही मुझे बाहर विदेशों का कॉन्ट्रैक्ट मिला और कॉन्ट्रैक्ट मिला भाई संगीत के कार्यक्रमों से जुड़ गया मैं और अब संगीत मेरी जिंदगी बन गया। और संगीत को जिंदगी बनाने वाले संगीत प्रेमी होते हैं आप जैसे। तो बहन भाइयों कार्यक्रम को समेटते हुए धन्यवाद दें कुछ लोगों को जिनके नाम मेरे पास पहुंचे हुए हैं। रागनी बिटिया आपकी दुआएं, आपका प्रेम झलकता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीरा जी आपका संदेश मिल गया है, सो नाइस ऑफ यू। प्रज्ञा जी थैंक यू वेरी मच। और हमारे किशोर भाई किशोर पांड्या कहते हैं पूरी गैंग यहाँ मौजूद है मेरे पास, सब आपको दुआएं दे रहे हैं। भाई एक बात बताऊं आपको, ये जो जन्मदिन आता है ना ये उम्र नहीं बढ़ाता है, एक्चुअली उम्र को घटाता है। सही बात है, कभी ध्यान से सोचिएगा, अगर मैं 80 बरस की उम्र लेके आया तो 1 बरस और कम हो गया आज। तो जब भी जन्मदिन आता है आयु को घटाता है, लेकिन दोस्तों का प्यार और शुभकामनाएं और दुआएं जब आती हैं तो वो उम्र को बढ़ाती हैं। तो भाई किशोर भाई कहते हैं मेरे यहां इस समय फरत भाई, फरत हुसैन, सफदर हुसैन, सलीम भाई और भाई सारे के सारे कहते पूरी गैंग यहां मौजूद है। तो भाई कांति कांति भाई देसाई और कहते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के सारे प्यारे प्यारे लोग हैं तो वो सब आपको दुआएं दे रहे हैं और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। किरण जी आपका संदेश मिल गया है, थैंक यू वेरी मच। और भाई अगर कोई रह गया हो तो दिल पर लिख कर ले जा रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ये सांसें, ये जीवन, ये भाई क्या कहते हैं, जो भी मेरे पास है आप ही का दिया हुआ है, एहसान है आपका, कैसे कोई चुका सकता है, आपके प्यार को कैसे कोई भुला सकता है। थैंक यू वेरी वेरी वेरी वेरी मच।

0: तेरी रानी। जी हाँ, ये दोनों गाने सुनकर कितनी बार हम सुनते हैं ये गाना, लेकिन आज तो स्पेशली हम अप्रिशिएट करेंगे इन गानों को, क्योंकि सचिन भौमिक नाम है भौमिक, सचिन भौमिक, दैट्स अ वेरी बंगाली, लेकिन इनका स्पेलिंग एक्चुअली बी एच ए यू एम आई सी के होना चाहिए, लेकिन बी एच ओ डब्ल्यू एम आई सी के लोगों ने लिखना शुरू कर दिया भौमिक, तो भौमिक ही हो गया। 17 जुलाई 1930 में इनका जन्म हुआ, मतलब के 96th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सचिन भौमिक, हु एक्चुअली पास्ड अवे ऑन 12th of April 2011। अब इनके बारे में मैं जितना भी कहूं कम है, क्योंकि 94 फिल्म्स ही रोट स्टोरीज ऑफ एंड स्क्रीन प्लेज, इनका मेन पेशा था राइटिंग स्टोरीज ऑफ फिल्म्स। अब मैं जिन फिल्मों के नाम लूंगा और कहूंगा कि आपने ये फिल्में जब देखी और उसमें आपने राजेश खन्ना को अप्रिशिएट किया और अमिताभ बच्चन को अप्रिशिएट किया या शाहरुख खान को अप्रिशिएट किया, लेकिन जब देखा जाए तो स्टोरी किसने लिखी, इस फिल्म को जन्म किसने दिया, जैसे कि एक गाने को एक राइटर जन्म देता है, वैसे ही एक राइटर एक फिल्म की कहानी को जन्म देता है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है पूरी। एंड उन्होंने पूरी लाइफ में एक ही फिल्म डायरेक्ट की थी, वो थी राजा रानी, जिसका गाना आपने सुना, मैं एक चोर तू मेरी रानी। कितनी ब्यूटिफुल, आई मीन 100 करोड़ वाली फिल्म, यू नो, आज की तारीख में अगर गिना जाए तो वो फिल्म ने 100 करोड़ आज की तारीख में कमाया होता। राइटिंग वॉज हिज मेन वर्क, जैसे मैंने कहा, और स्क्रीन प्लेज भी लिखते थे वो। एंड देन ही इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर सम ऑफ द मेजर फिल्म्स। अगर मैं आपको नाम बताऊं सब फिल्मों के, जैसे कि अवार्ड्स इनको मिला था, एक ही फिल्म का अवार्ड मिला था इनको, एंड दैट वॉज कौन सी फिल्म थी, ब्रह्मचारी में इनको बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया था, और नॉमिनेशंस मिले थे, आराधना थी एक, और दूसरी फिल्म थी वो थी पहचान फिल्म। सो नॉमिनेशंस वाले और अवार्ड वाले गाने, फिल्म के गाने मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। एंड फिल्मों के नाम ऐसे मैं बताऊं तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अनुराधा। You know, he was associated with several hits such as Anuradha 1960 ki. Shuruaat inki sabse pehle hui Mohan Sehgal, Nargis Usmitni, Nargis Starer, Lajwanti film 1958 ki. Uske baad inhone likhna shuru kar diya Anuradha, phir uske baad Aai Milan Ki Bela, Janwar, Love in Tokyo, Aaye Din Bahar Ke, An Evening in Paris, Brahmachari Aaya Saavan Jhoom Ke, Aradhna, phir 1970s mein Pehchan film, Aan Milo Sajna, Karwaan, Yes, and Beiman, Dost film, phir Khel Khel mein, jisme Rishi Kapoor ji the, and Hum Kisi Se Kam Nahi, उसमें भी ऋषि कपूर जी थे, गोलमाल, यस, कर्ज 1980s में कर्ज फिल्म की स्टोरी, फिर 2 और 2 5, बेमिसाल, जमाने को दिखाना है, कभी कभी वो को राइटर होते थे उनके साथ, या तो डायलॉग्स में कोई और आ जाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही यूज्ड टू बी राइटिंग द स्टोरीज ऑफ द फिल्म्स। पर 1980s से 90s दे यूज्ड टू शेयर आउट, ज़्यादातर स्क्रीन प्ले ज़्यादा किए थे इन्होंने 80s और 90s में, नास्तिक फिल्म, अंदर बाहर, साहेब, फिर आई थिंक दूसरी फिल्में जो 90s की जो मुझे याद है, कोयला, फिर करण अर्जुन, मतलब राकेश रोशन जी के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा, ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कोयला, फिर सोल्जर, फिर आ अब लौट चलें, कोयला मैं 2 बार बोला नहीं कीमत, जो याद आता है मैं बोलते जाता हूँ। एंड देन 2000 के बाद कोई मिल गया, ऋतिक रोशन, किसना, यस, एंड क्रिश, ये सब फिल्में इन्होंने मतलब स्क्रीन प्ले किया या लिखी। We are remembering none other than Sachin Bhomwick. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ पे भी मैं गौर करूँगा, क्योंकि इन्होंने शादी की थी हमारी तीन देवियाँ की हीरोइन एक थी जो कल्पना के साथ शादी की, लेकिन 1-2 साल ही हुए और डिवोर्स हो गया। 1971 में ही रीमैरिड एक म्यूजिशियन थे, डी एम टागोर, उनकी बेटी जो थी बांसरी, उनके साथ शादी हुई और एक बेटा संदीप भौमिक। अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन आई थिंक विल स्टॉप देयर। इनकी एसोसिएशन थी जे ओम प्रकाश, द फादर इन लॉ ऑफ राकेश रोशन, सुभाष गई, नासिर हुसैन, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, प्रमोद चक्रवर्ती, शक्ति सामंत। इनके साथ एक नहीं, दो नहीं, पर साथ साथ फिल्में भी की। सो वी आर रिमेम्बरिंग सचिन भौमिक, व्हाई नॉट ए। एंड सेकेंड आवर में वी आर गोना रिमेम्बर स्नेहल भाटकर एंड वी आर गोना रिमेम्बर जरीना वहाब। जरीना वहाब की 67th बर्थडे है आज। एंड इन द एंड वी आर गोना ऑल्सो रिमेम्बर रीटा भादुरी। रीटा भादुरी नॉट द सिस्टर ऑफ अपनी जया भादुरी, दिस इज एन एक्ट्रेस कॉल्ड रीटा भादुरी, हर 8th डेथ एनिवर्सरी। ओ जूली वाली, जूली की हीरोइन, हाँ उनकी 8th डेथ एनिवर्सरी है। सो चार चार ट्रिब्यूट्स है, जुड़े रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, $7.49. Leela Medium Atta 10kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5kg for $3.99. Mido Yogurt 10kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Lister, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Lister, LE5 4UN.
4: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
5: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, nazar se nazar. Performing live in Birmingham on Friday 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a 3-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all

साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो हाय रे हाय रे हाय रे साजना।

0: 1970 की फिल्म पहचान, जिसमें सचिन भौमिकी जी को फिल्म बेस्ट स्टोरी अवार्ड नॉमिनेट किया गया था, और दूसरे नॉमिनेशंस थे सोहनलाल कन्वर फॉर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, नीरज फॉर द कंपोजिशन बस यही अपराध मैं किया करता हूँ, और ये सब नॉमिनेशंस थे। लेकिन मुकेश जी इस गाने में, इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वर्मा मलिक को कंपोजिशन सबसे बड़ा नादान, एंड शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था, और चांद उस्मानी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। बट द स्टोरी वॉज रिटन बाय द वन वी आर रिमेम्बरिंग हु गॉट नॉमिनेटेड, सचिन भौमिक।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3432, Indian rupees 129.29, Pakistani rupees 373.39, Afghanis 88.57, Kenyan shillings 173.6, and Mauritian rupees 63.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £95.30 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: Leica Radio.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
4: Roop tera mastana, pyar mera.

0: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons from Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
1: जी हाँ, आराधना की कहानी सचिन भौमिक ने लिखी थी। कितनी प्यारी कहानी, शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की और प्रोड्यूस भी शक्ति सामंत ने की। वी आर रिमेम्बरिंग सचिन भौमिक।
2: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, Panto fun for all the family.
7: Radio partner Leica Radio.
8: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
10: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक।
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
10: जैमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक।

0: खेल खेल में अनदर ब्यूटीफुल फिल्म दैट वाज अ हिट. जन्म किसने दिया? एक कहानी लिखकर सचिन भौमिक ने. नेक्स्ट, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. कितनी 94 फिल्म्स सचिन भौमिक. ये तो होना ही था, हमने याद करना ही था उनको. थैंक यू फॉर योर मैसेजेस.
1: दिस इज द फ्रेशेस्ट साउंड अक्रॉस द मिडलैंड्स. We are Leica Radio.

0: कितने प्यारे गाने हैं ना, आपको बड़ा मजा आएगा इस आवर में भी, क्योंकि स्नेहल भाटकर जी के जो कंपोज किए हुए गाने आर एवरग्रीन, नो डाउट अबाउट इट। उनका नाम था वासुदेव गंगाराम भाटकर। अभी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा इनका नाम कैसे कन्वर्ट हो गया इनटू स्नेहल भाटकर। ही वाज बोर्न ऑन 17th of July 1919 एंड ही पास्ड अवे ऑन 29th May 2007। सो 1919 में जन्मे हुए और आज इनकी बर्थ तिथि, सो मतलब के वी आर एक्चुअली रिमेम्बरिंग हिम ऑन हिज 107th बर्थ एनिवर्सरी, 107th बर्थ एनिवर्सरी। इनके पिताजी गुजर गए जब वो 18 महीने के थे और माताजी टीचर थी और एक सिंगर भी थी, सो शी बिकेम हिज इंस्पिरेशन म्यूजिक में, एंड ही पिक्ड अप द बेसिक्स ऑफ म्यूजिक, जो नॉर्मल बेसिक्स होते हैं वो माता जी ने उनको सिखा दिए एंड उनको चस्का चढ़ गया संगीत का। एंड ही पिक्ड अप द बेसिक्स ऑफ म्यूजिक फ्रॉम हर एंड आफ्टर मैट्रिकुलेशन, जो 10th ग्रेड होता है, ही लर्नड म्यूजिक फ्रॉम अ म्यूजिक स्कूल इन दादर मुंबई ऑफ कोर्स, जहाँ पे सिद्धि विनायक है, यू वुड नो दादर एरिया। नाउ ही वॉज वर्किंग फॉर HMV, हिज मास्टर्स वॉइस, और वहाँ पे एक रूल हुआ करता था कि यू कैन नॉट वर्क आउटसाइड द जॉब, जो नौकरी करते हो उससे बाहर कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते हो। नाउ ही वॉज वर्किंग फॉर HMV, बट ही वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ कंपोजर आउटसाइड हिज जॉब, सो ही यूज्ड स्यूडोनिम्स, यानी कि नाम बदल कर काम करते थे टू अवॉइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर उन्होंने लिखा होता कि वासुदेव गंगाराम भाटकर और बाहर के गाने कुछ कंपोज करके उनका नाम डाला, तो HMV वुड कॉल इट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाम यूज किया बी वासुदेव। सो बी वासुदेव में भाटकर वासुदेव, इन लोगों को पता नहीं चलता था कि HMV को कि वो ही आदमी है। एंड देन ही यूज द नेम स्नेहल कंपोजिशंस में। द नेम स्नेहल भाटकर बिकेम इज प्रोफेशनल नेम आफ्टर 1950, क्योंकि 1947 में इन्होंने नील कमल मूवी, पहली मूवी में कंपोज किया था, तो 1950 से इनका नाम प्रोफेशनली स्नेहल भाटकर हो गया। द नेम स्नेहल कहाँ से निकला, इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम हिज देन न्यूली बॉर्न डॉटर स्नेहलता। वो हीरोइन नहीं, इनकी डॉटर का नाम स्नेहलता था, और स्नेहलता इज नाउ मैरिड टू रामकृष्ण बारडे, एंड तीन बच्चे उनके थे, रमेश भाटकर, फेमस मराठी एक्टर है वो अभी, अविनाश भाटकर और स्नेहलता, और स्नेहलता के नाम से इन्होंने स्नेहल कर दिया और स्नेहल भाटकर के नाम से मशहूर हो गए। फर्स्ट हिंदी मूवी नील कमल 1947, स्पेशल बॉन्ड उनका था केदारनाथ शर्मा, यू नो केदारनाथ शर्मा, द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड लिरिसिस्ट, जिन्होंने काफ़ी लोगों को ब्रेक दी थी, जैसे कि राज कपूर, और उनके हिट गाने जैसे कि कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, दैट्स द जेनिथ ऑफ भाटकर्स करियर, 1961 की जो फिल्म थी। दूसरे गाने ऑफकोर्स जो थे, ए मेरे हम सफ़र फिल्म, छबीली का गाना 1960 का। अब छबीली फिल्म में स्नेहल भाटकर ने कंपोज किए गाने और राइटर थे एस रतन। हम याद कर रहे हैं नन अदर देन स्नेहल भाटकर। फिल्में थी इनकी, जो फेमस फिल्में थी, हमारी बेटी 1950 की, फिर दूसरी थी बिंदियाँ, देन आज की रात। फिल्में तो 19 थी, लेकिन उसमें थे फरियाद, हमारी याद आएगी, छबीली, जलदीप, दिवाली की रात, और आखिरी फिल्म थी पहला कदम। स्नेहल भाटकर के गाने सुनते हैं हम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: The latest rates of SBI UK For £1 in British sterling, you can get up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: Well, Saturday, that's tomorrow at 10 p.m. It's England versus France for the third place playoff. And that's going to be in Miami. On Sunday, of course, Spain versus Argentina in New York, New Jersey Stadium in East Rutherford. And predictions are Spain 58% and Argentina 42%. Let's see who wins. FIFA World Cup 2026, which was founded in 1930. Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor. Playback singer Aman Trika. Or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: tasty track of the hour. Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: India mein, Pune mein, there is an institute called FTII. FTII, yani ke Film and Television Institute of India. वहाँ पे 1973 में एक क्लास थी ऑफ स्टूडेंट्स हु वर ट्रेनिंग टू बिकम एक्टर्स. अब वो क्लास ऑफ 1973, दैट बैच हैड सम बिग नेम्स इन इट. उनमें से जो बड़े नाम मुझे याद हैं वो है जैसे कि नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, कमलजीत सिंह, शैलेंद्र सिंह, ये सब नाम 1973 के बैच में थे. और दो और नाम जिनकी आज ट्रिब्यूट्स हो रही है, हमने जरीना वहाब की ट्रिब्यूट जो की, एंड नाउ वी आर रिमेम्बरिंग रीटा भादुरी. रीटा भादुरी की 8th डेथ एनिवर्सरी है और जरीना वहाब इज 67 ईयर्स ओल्ड टुडे. ये दोनों इस बैच में हुआ करते थे, FTII 1973 का बैच, और दोनों अच्छी फ्रेंड्स थी. अब रीटा भादुरी को हम अगर याद करके उनकी कहानी कहें तो इट्स नॉट जया भादुरी सिस्टर रीटा भादुरी विद द सेम नेम. एक्चुअली रीटा भादुरी 1968 से आई थिंक शी डिड 2018 तक 50 ईयर्स शी डिड. शी वॉज बॉर्न ऑन 4th of November 1955 अप टू 17th of July 2018. शी पास्ड अवे ड्यू टू किडनी फेलियर. शी वॉज बॉर्न इन लखनऊ यूपी एंड पास्ड अवे इन मुंबई. अब सपोर्ट रोल्स में उन्होंने 1970s, 80s और 90s में ज़्यादातर सपोर्ट रोल्स किए थे. फिल्म जूली में इन्होंने जो काम किया वो दैट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस. यस, रीटा भादुरी के दूसरी की दूसरी फिल्में अगर मैं याद करूं तो सावन को आने दो 1979 की, है ना, प्यार जिंदगी है 1996 नवीन निश्चल के साथ, एंड लास्ट उनका रोल था एक टीवी सीरियल में, दैट वॉज निमकी, निमकी मुखिया, उसमें वो मुखिया बनी थी एंड शी वॉज द ग्रैंड मदर इन दैट पर्टिकुलर सीरियल. रीटा भादुरी वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल एक्ट्रेस. एंड नेक्स्ट गाना जो होगा दैट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ जरीना वहाब एंड रीटा भादुरी इन द फिल्म सावन को आने दो. जरीना वहाब इज सिंगिंग एंड उसमें एक सीन आता है डांसिंग का, वो डांसिंग में रीटा भादुरी है. सुनते जाइएगा, वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन रीटा भादुरी.
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Each currency is equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3443, Indian rupees 129.41, Pakistani rupees 373.65, Afghanis 88.64, Kenyan shillings 173.74, and Mauritian rupees is 63.38.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £95.64 per gram.
2: Ron Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ron Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Cranking out the biggest hits for the capital. This is Leica. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
3: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
4: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 7.49. Leela Medium Atta 10kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5kg for 3.99. Mido Yogurt 10kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollots Hill, Leicester, LE5 4UN. Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.

0: therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
1: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialise in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan. Locate, design, manage, cater.
2: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
3: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
4: व्हेन यू गो अब्रॉड, एवरीवन नोज द बेस्ट वे टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टूड इज टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश बट लाउडर।
5: फोर बीयर्स प्लीज गार्सन।
4: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
6: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सवे में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
7: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
8: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at leicamedia.co.uk. This is Leica Radio across the Midlands.

0: इस गाने में दोनों थे, जरीना वहाब और रीटा भादुरी. व्हाट अ कोइंसिडेंस, दोनों की ट्रिब्यूट है.
1: This is Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, the Midlands and Greater Manchester.
0: इस गाने में भी दोनों हैं. फिल्म है गोपाल कृष्णा 1979 की, जसपाल सिंह, हेमलता एंड कोरस, आयो फागुन हथीलो. और दोनों जिनकी ट्रिब्यूट्स हमने आज की, जरीना वहाब और यस ऑफ कोर्स रीटा

कभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: तरसेम जसर, गीत घुराया ते योगराज सिंह।
1: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
2: क्रिएट टेरर।
3: पगले आ रही दुनिया तो दुनिया मार करे सरदारा
0: ते। देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
4: एक सिंह दा पुत्तर दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार लई लड़ूंगा भी।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald plastic.com.
6: The Janan and J. Dodd summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Dodd summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: जी हाँ, रवि शर्मा का बर्थडे एंड ऑफ कोर्स हमारे विजय गुनोआ जी का बर्थडे एंड वंडरफुल बर्थडे आई वाज टोल्ड ऑफ हमारे सत्य जैमिनी, अ वंडरफुल लिसनर ऑफ लाइका गोल्ड. हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ देम एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. अब एक ट्रिब्यूट करने जा रहा हूँ, सुनते रहिएगा. और वो ट्रिब्यूट है ऑफ अ वंडरफुल एक्टर कॉल्ड स्वरूप दत्ता. स्वरूप दत्ता वॉज बॉर्न ऑन 22nd ऑफ जून 1941 एंड ही पास्ड अवे ऑन 17th जुलाई 2019. यस, दैट वॉज 7 years अगो. द बंगाली एक्टर हु डिड अ वंडरफुल एंड मार्वेलस रोल इन द फिल्म उपहार विद जया बच्चन. ओ, तब तो जया बाधुरी थी वो. तो उनका एक गाना रफी साहब का गाया हुआ विच इज एवरग्रीन. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी की लिरिक्स है. फिल्म उपहार 1971, अ ट्रिब्यूट टू स्वरूप दत्ता ऑन लाइका गोल्ड. एंड सैंडी शाह इज हियर. ही इज गोना टेक ओवर एंड टेक यू फॉर अ ड्राइव एंड इट्स गोना बी अनिका ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. It's the 374th day of Laika Radio Midlands. Bali Brahmbhatkar, Namaskar.
1: It's summer on the Laika Radio Network.

0: 2 kg $10.99 and Falcon Paneer Box $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg $8.99. Karela or Long Dudi $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.
1: Lester Miller is back.
2: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
1: Lember Hussain Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
2: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
1: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
2: Arts Council England.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
5: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
6: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स सबके लिए कुछ न कुछ है 62 टू 64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS पर चाहे डाइन इन करो टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ कॉल कीजिए 0116-332-5100 एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
7: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
2: एक्सपीरियंस Unforgettable evening of timeless ghazals. The prince of ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
3: Nazar se nazar.
2: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
5: Lester Miller is back.
2: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
5: H. Dami. Bringing the hits, the energy and those proper live stage vibes.
2: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
5: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
2: Arts Council England.
6: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
7: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
8: Leica Radio.
7: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
9: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavours from around the world, you can make every meal memorable.

0: अभी नखरा ज्यादा लड़का करता है ये लड़की, आप डिसाइड करके जल्दी से बता दो।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी
1: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
2: Friday Fire with Radio Wally's Roller Coaster, only on Leica Radio.

0: स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है,
1: क्योंकि हर बेबी और बाबा को बेस ही पसंद है।
2: This week's number one on the Leica Chart Show. Tune in every Friday with Annika at 6 PM on Leica Radio, Greater London.
1: लेकिन फिलहाल बेस को थोड़ा पॉज करते हैं, बिकॉज we need to see what's happening around the globe before we do that. Yes, baby, the universe heard us. Sorry remains at number one on the Leica Chart Show, as you just heard with Annika, the show before mine. Your weekend drive. So, चलो, volume up, let's enjoy it together, और मिलते हैं news के बाद.

0: product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors urgently need support. Please help now. Go to dec.org.uk to donate. Thank you.
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
4: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
5: Yeh hai Leica Gold 2.

0: Mica Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574।